0: गम क्या है?
1: एक दिल से लगे एक दिल से बुझे, अब गम क्या है?
0: गम क्या है?
1: सावन की घटा बरसाए खुशी, अब गम क्या है?
0: गम क्या है?

0: मदहोश हूँ मैं और होश नहीं, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: कुछ तू ही बता दे जोरा जबी, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: पहलू में रहे तुम सा हंसी, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: हो जाऊँ न मैं दीवाना कहीं, अब क्या होगा
1: क्या

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट जटक।

0: एक सायक हर सीन हजारों इसमें मारा मारी से भरपूर ठंकड़ चढ़के
1: पांच आने में
0: थोड़ा भड़के
1: पांच आने में
0: छाती झड़के
1: पांच आने में
0: देखो मेरे यार जवानी खेल अजब सिखलाए
1: दो दीवाने
0: आए
1: अरे एक तमाचा
0: लाए
1: देखो तो भी सभी फिल्म ये बोले नाचे गाए कहो

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था शालू कि अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूं।
0: तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूं।
1: नहीं शालू, नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो, कुछ नहीं।
0: मुझे इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत भी नहीं, और अगर कुछ जानना भी है तो इतनी जल्दी क्या, सारी जिंदगी पड़ी है।
1: लेकिन शालू, मैं तुम्हें
0: मैं कुछ सुनना नहीं चाहती।